0: रूप दे विच अलग अलग लिखिया गया है पोथिया दे विच, पर नाहिन पाठ इकट्ठा है। जो जो कहे सोई भल मन्ना, नाहिन का बोल करत, नाहिन का बोल करत एदा पाठ छापिया गया है, पर नाहिन पाठ इकट्ठा ही है सारा।
1: निमक ना बिसराओ हीए मोरे ते

इस संबंध में थोड़ा जहा मैं अर्ज करा। मुसलमान तो बिना खुदा दी गल, खुदा दा उपदेश किसी दूसरे को नहीं सुनना चाहते। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज जद खाना है खुदा जद्दा विच गए, मक्के मदीने गए, करबला गए, तो केड़ा लिबास से आसा हथ किताब कच्छ कूजा बांग मुसल्ला दारी। इस रूप च उपदेश लेना है तो आप इसे च दे देने, मुसल्ला भी रख ले, कूजा भी रख ले, भावे बांग सतनाम भी दिती है पर दिती है। आसा हथ किताब कच्छ, बगल दे सतगुरां दे एक पोथी आउंदी सी जिथे बाणी उतरदी सी, आप लिख लैंदे सी। उस तो मुसलमानां नूं इह भुलेखा रिहा है कुरान शरीफ है। आसा हथ किताब कच्छ कूजा बांग मुसल्ला दारी, ये बेख बनाया। इस बेख नाल बगदाद देश सऊदी अरब देश वख वख जो इस्लामी केंद्र सन, महाराज ने उत्थे सच दी गल सुनाई। जोगियां कोल जद गए ते जोगियां दा भी यही नुक्ता निगाह है, ग्रस्ती सानू उपदेश नहीं कर सकता। ग्रस्ती सानू परमात्मा दी गल नहीं सुना सकता, असी ग्रस्ती कोल नहीं सुनते। तो महाराज जद जोगियां कोल गए ने, फिर बाणा उदासियां दा भगवा वेस, ताई जोगी कह रहे ने किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण ए भेखने वासी, ए भेख क्यों धारण कीता उदासियां वाला। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद ये जन्म तो ही उदासी सन। उपरां 5 साल दे जद होए, एक दिन दिन भर लब्बे नहीं, माता जी एक घर दूजे घर तीजे घर लभदियां, जिथे बच्चे खेडदे ने उन्हां तो पुछदियां ने श्री चंद किधरे देखे। बच्चे कहिंदे ने साडे नाल ते खेडदा ही नहीं, आउंदा ही नहीं, पड़ोसियां दे घरां च जांदे। श्री चंद ते नहीं आया सी, वो किथे आउंदा साडे घर, बुलाउण ते भी नहीं आउंदा। चिंतातुर हो गए माता सुलखनी, किथे गया होना है। पिंड तो बाहर निकले, तलवंडी तो बाहर निकले, की देखिया उजाड़ दे एक दरखत दे थले बैठे ने समाधि लग। तो माता जी थोड़ा जहा डांट दे लहजे च कहने ने, इथे उजाड़ च की पै कर दे, बच्चियां नाल खेड़िया करो, घर दे च रिया करो, छोटा जिहा बालक। उस वक्त बाबा श्री चंद ने भी यही लफ्ज कहने जो जन्म साखी दे दर्ज ने, मां जी सब उजाड़ी ते है, उजाड़ी ते है, आपां इत्थे रौनक दे च बैठे हैं, आनंद दे च बैठे हैं। 5 साल दे बाल जन्म तो ही निराश ते उदास सन। बाबा श्री चंद दे नाल एक पंथ चलिया उदासी, और शायद आपनों पता होवे सारे देश दे च ते अफगानिस्तान ईरान ते कुछ रशिया दी स्टेटा दे च नानक पंथ दा जो प्रचार कीता उदासियां ने कीता। ते भी मैं अर्ज करा सहजे सहजे कुछ 5% बाद विच उदासी भ्रष्ट हो गए। धन संपदा बढ़ गई, शक्ति बढ़ गई, सिर्फ 5% तो इन्हां कोल गुरुद्वारे लै लए गए, नहीं तो सारे इतिहासक स्थान भी इन्हां कोल सन। ये भी मैं अर्ज करा अफगानिस्तान दे जो सिख सजे उदासियां दे प्रचार दा सदका।

जाए, तीसरा कोई संसार को चोट लग जाए, उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। उदास ते निराश बंदा तीन तरह का फैसला करेगा, केड़ा? आत्म क्रांति, आत्म हत्या, आत्म विस्मृति, खुद नूं बदलना या खुद नूं भुलाना या खुद नूं मिटाना, इन्हां तिन्हां दे चों एक चुनाव करेगा। जो शब्द की चोट खा चुके है वो ते अपने आप नूं बदलेगा, आत्म क्रांति करेगा। बाकी दोहां तो खतरा है, हो सकदा है किधरे अपने आप नूं खत्म करे या अपने आप नूं भुलाण की कोशिश करे। कल सारा खुलासा मैं थोड़े सामने रखे, पर उन्हां दे चों भी कदी कदी ऐसा होया संसार तो चोट खा के, अकल तो चोट खा के उन्होंने अपने आप नूं बदलण की कोशिश की, संत बनने की कोशिश की, प्रभु के मार्ग दिते उन्होंने अपने आप नूं तोरिया। हुण जिहड़ा शब्द तो चोट खा गया, किसी थां तो चोट खा के अपने आप नूं बदल रहा है और प्रण करदा है, ए गुरु हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा, जो तू कहना है मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा, जिस तरह तुसी कहंदे हो। ते वाकई अमृत वेले उठन लग पवे, जप तप करन लग पवे, रहत वहत रख लवे, सब कुछ कर लवे, 10-20 साल हो जान ते होवे कुछ भी ना। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, मैं समाप्ति करा, भई निराशी बहुत दिन लागे, देश देशांतर में सगले जागे। पहले संसार तो निराश होके उदास होके परमात्मा की तलाश से चल पिया, हुण परमात्मा तो भी निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। क्यों? 10-20 साल लग गए, बहुत दिन लग गए। गुरु अर्जन देव जी महाराज, भई निराशी, निराशा पैदा हो गई कितों? परमात्मा से, पता नहीं कुछ है भी सही कि नहीं, कैवें ही चल पाया निराशा। भई निराशी बहुत दिन लागे, देश देशांतर मैं सगले जागे, खिन रहन न पाओ बिन पग पागे, होए कृपाल प्रभ मिले सवागे। निराशा पैदा हो जाती है। इस रस्ते देच सतगुरु जानकारी करा रहे ने, एक पड़ाव ऐसा भी आ जाता है निराशा घेर लेंगे, पता नहीं कुछ है भी सही के एवें मैं अमृत वेले टकरा पिया मारदा, घंटा दो दो घंटा जप पिया करदा और सारी साधना पिया करदा, कुछ है भी सही के नहीं। निराशा जागेगी। उस निराशा भरी हालत विच मनुख दो फैसले कर सकता है, उन्हां दो फैसलों का जिक्र करके मैं समाप्त करा खुलासा कल। पहला गलत फैसला, नास्तिक हो सकता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बंगाल का केशव चंद्र महान धार्मिक मनुख, सारा सारा दिन जप करन वाला, अद्धी अद्धी रात नू उठ के जप करन वाला नास्तिक हो गया। उन्हें तीन किताबां नास्तिकता से लिखिया। बंगाल दे जो अज 50 साल तो कम्युनिस्टां की हकूमत चली आ रही है, ठीक है कम्युनिज्म का प्रचार भी है, पर ये केशव चंद्र का हाथ भी है। वो कहिंदा सी अन्न अन्न ते होत है, घास घास ते होए, त्यों मानुष मानुष ते करता अवर न कोए। अन्न तो अन्न पैदा हुंदा है, घास तो घास पैदा हुंदा है, पशुआं तो पशु पैदा हुंदे ने, मनुखां तो मनुख पैदा हुंदे ने। रब नूं विचकार लैण दी की लोड़ है? कोई रब नहीं, कोई परमात्मा नहीं। केशव चंद्र बंगाल जे 50 साल तो कम्युनिस्ट है, ते कम्युनिस्टां दी हकूमत चली आ रही है, उहदे केशव चंद्र दा भी हथ है। पर ये बड़ा धार्मिक मनुख से महान नास्तिक हो गए, महान नास्तिक हो गए। मैं सिख जगत दे भी कुछ चोटी दे दाना सियाने मनुख जानना, नास्तिक हो गए। यह भी मैं अर्ज करता स्टेज उते कहीं ना लेना। पर ऐसा नहीं है कि पहले आस्तिक नहीं सन, सब कुछ करते सन। हालत ए हो गई भाई निराशी, पहले संसार तो निराश होके परमात्मा की तलाश की थी, हुण परमात्मा तो भी निराश हो गए। ऐसी हालत च गलत फैसला तो यह हो सकता है कि नास्तिक हो सकता है। पक्का नास्तिक, खतरनाक नास्तिक वो होता है जो पहले धार्मिक होता है। ये भी मैं स्पष्ट। दूसरा फैसला कि हे प्रभु मैं जो कुछ करना सी कर लिया, हे गुरु जो कुछ मैं करना सी कर लिया, ये कुछ नहीं होया, तू रहमत कर, तो बख्शिश कर।

0: ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੁੰਕਿ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਸਨ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਣਾ, ਮਨਮੁਖ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੈ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਢੰਗ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਉਜਾੜ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸਨਿਆਸਾ, ਮਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਉਜਾੜ ਦੇ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਦਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸਮਝ, ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ, ਬਨ ਜੈਸਾ ਹੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਸਮਝ ਲੈ। ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚ? ਸਿਰਫ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਨਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਉਜਾੜ ਸਮਝਦਾ। ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਘਰ ਉਜਾੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ ਉਦਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, 3 ਸਾਧਨ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ 3 ਕਾਰਨ ਟੋਟਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਪ੍ਰਥਮ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਹੋ। ਬੋਲ ਉੱਚੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਹਦੀ ਸਰੋਤ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। एक दिन दी जपी हुई सुखमनी इन्हों निराश कर देगी, उदास कर देगी। क्यों? शब्द तीर दी तरह लगेगा। अंतर प्यास उठी प्रभु केरी, सुन गुरु वचन मन तीर लगैया, मन की बिरता मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। कल इस पीर दा मैं जिक्र कीता सी। भगत कबीर जिस ढंग नाल इसनो बयान करदे ने ए भी सुन लो। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। सतगुर दी बाणी दा बाण ऐसा लगया, तीर ऐसा लगया, शब्द मन नू छोएगा, मन नू चोट करेगा। जितने चिर तक शब्द ने मन नू चोट नहीं की थी, समझ लो इसने सुनया ही नहीं है। मन स्रोता बने, जबान वक्ता बने। जबान आखे वाहे गुरु वाहे गुरु, ये वक्ता बने, मन स्रोता बने। पर होंदा कि ये जबान भी वक्ता बनती है, मन भी वक्ता बनता है। मन हर वक्त बोलता है, नहीं चुप करता, ये सुनता ही नहीं। मन दी सुनन दी आदत ही नहीं, कि जद सुनता ही नहीं तो शब्द मन का हिस्सा ही नहीं बनता। उखड़े उखड़े लोग अक्सर सत्संग दे च बैठे होंदे ने, उखड़ उखड़ के लोग पाठ करते हैं, सुनना कठिन है। अगर कोई सुन लवे, महाराज कहिंदे ने, दोहरा दें, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का रास। कबीर कहिंदे ने, गुरु दा शब्द मैं की सुनिया, गूंगा हो गया, मैं मिथ्या नहीं बोलदा, कौड़ा नहीं बोलदा, फिका नहीं बोलदा, व्यर्थ नहीं बोलदा, जबान तो गूंगा हो गया। जिन्नी पीड़ा हुई है तीर दे लगन नाल, मैं इनो भी बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। पर जितना रस आ रहा है, इस रस नो भी मैं बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। इको ही पीड़ा है। भगत चाहते ने बनी रहे, बनी रहे, बाकी हर पीड़ तो मनुख छुटकारा चाहता है। जरूर थोड़े विचों जड़े कोई अभ्यासी होंगे ते शब्द चोट कर गया होगा, उदा एक अनुभव होंदा है, परमात्मा तो नहीं मिलता ते ना सही, अपनी प्यास बनी रहने दे, अपनी तड़प बनी रहने दे, उदी ए उमंग पैदा हो जाती है, उदी ए तड़प आती है। इनू एक सूफी अमीर खुसरो इंज बयान करता है, या रब दुआए वसल ना हर गिस कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। हे प्रभु, हे खुदा, हर वक्त मैनू तड़पण दे, दुआ करण दे, तेरे अगों मैं फरियाद करदा रवा, नहीं मिलदा ना मिल, कम से कम मैनू फरियाद करण दे। इस फरियाद दे च भी रस है, इस फरियाद दे च ही आनंद है। जद कदी कोई गहराई नाल अरदास करदा है, प्रार्थना करदा है, यकीन जानो उसे च भी आनंद है, उसे च भी रस है। इको एक पीड़ा है जेदे च महा रस है। कबीर कहिंदे मैं गूंगा हो गया, नहीं बयान कर सकता। गूंगा हुआ बावरा, बावरे तो मुराद पागल इत्थे नहीं है, बावरे तो मुराद भोला, भोला हो गया। भोला मनुख अंदरों बाहरों एक होंदा है, ये मैं अर्ज कर दें। चलाक मनुख बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। जिन्हों बाबा फरीद इंज कहिंदे ने, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। औरंगजेब भी दो वक्त कुरान की तलावत करता है, पांच वक्त नमाज पढ़ता है, जुमा रात नू जकात देंदा है, रमजान दे महीने च रोजे रखता है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, तोरा मन नादानम के यजदा शनास, श्री मुखवाक पातशाही दसवें, तू खुदा शनास नहीं है, पखंडी है, झूठा है, फरेबी है। तेरा नमाज पढ़ना भी झूठ, तेरी कुरान दी तलावत भी झूठ, तेरे रमजान दे महीने च रखे रोजे भी झूठ। तू राम नदानम के यजदा शनास, बरामज़त ओ का रहा दिल खराश, तू ओ कम कीते ने जेदे नाल लोगां दे दिलां नूं खराश पहुंची है, तू लोगां दे दिलां नूं चोट पहुंचाई है। रब नाल जुड़िया होया मनुख लोगां दे दिलां नूं जोड़दा हुंदा है, तोड़दा नहीं हुंदा। तू ते कदम कदम दे ते दिल तोड़े रहे, तू पखंडी है, तू झूठा है, चलाक है, बाहरों कुछ होर पेश करदा है अपने आप नूं, अंदरों कुछ होर। हमू मर्द बायद शबद सुखनवर, न शिकमे दिगर दरदा हाने दिगर। असी उसनों ही मर्द मनदे हां, मनुख मनदे हां, जो जबान दे चे ओही दिल दे चे, जो दिल दे चे ओही जबान दे चे। तेरी जबान ते कुछ होर है, तेरे दिल दे च कुछ होर। जिन मन होर मुख होर, से कांडे कच्चे है, ये कच्चे है। चलाक मनुख बारों कुछ होर आंदा है, अंदरों कुछ होर आंदा है। हुण मैं अर्ज करा, चलाक मनुख हो सकदा है संसार विच बड़ी सफलता प्राप्त कर लवे, लेकिन धर्म दी दुनिया च पछड़ जाएगा। भोला मनुख धर्म दी दुनिया च बहुत अगे लंघ जाएगा, हो सकदा है संसार विच पछड़ जाए। ये भी मैं अर्ज करदे हां। भगत कबीर कहंदे ने, चतराई ना चतर भुज पाई। चतराइया नाल नहीं मिलना, चलाकियां नाल नहीं मिलना। चतराई ना चतर भुज पाईए, रे जन मन माधो सों लाइए। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगर। उते भोले भा नाल मिलना। बावरा ओला कबीर कहंदे ने, ऐसा शब्द दा तीर लगे है, ओला हो गया, अंदरों बारों एक हो गया। ईरानी सूफी संत हाफिज कहंदा है, सद जां फिदाए आ के जबानश दिलश यकेस्त। हजारां जिंदड़ियां उस मनुख तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां, जेदी जबान ते दिल एक है। जो कहंदा है ओही दिल दे च है, और जो दिल दे च है ओही कहंदा है। जो बाहरों है ओही अंदरों है, जो अंदरों है ओही बाहरों है। हर मनुख दे दो दो रूप ने। ये बाहरों मनुख दिखाई दे रहे, अंदरों नहीं। इस वास्ते असी किसे कुत्ते नू नहीं कहंदे भी ए कुत्ते तू कुत्ता बन जा, ए गऊ तू गऊ बन जा, ए शेर तू शेर बन जा, ए खोते तू खोता बन जा। ऐसा कहण दी लोड़ नहीं, होते है नहीं खोते। पर रोज कहना पैंदा है, बंदे तू बंदा बन जा, ए इंसान तू इंसान बन जा। क्यों? खोता खोते दी तरह जी रही है, शेर शेर दी तरह जी रही है, गऊ गऊ दी तरह जी रही है, मनुख मनुख दी तरह नहीं जी रहा। फिर किस तरह जी रहा है? करतूत पशु के मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। कबीर कहंदे ने, भोला हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, कन्ना तो भी बहरा हो गया, हुण मैं व्यर्थ सुनदा भी नहीं, फिजूल दे बोल मैं सुनदा ही नहीं, मैं गलत गल कन दे च अंदर जान ही नहीं देंदा। देखो, कोई साडे घर दे च कचरा सुट जाए, गंदगी सुट जाए, असी कहांगे असभ्य मनुख, उहदे नाल लड़ भी सकदे हां। पर जो कन्ना दे राही गंदियां गल्लां साडे विच सुट जाए, असी बड़े शौक नाल सुनी है, नहीं फिर ये सावधानी नहीं है। कबीर कहंदे ने, मैं सावधान हो गया, मैं व्यर्थ दियां गल्लां सुनदा भी नहीं। गल खत्म। पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान। इनू स्वामी रामानंद ने बसंत राग दे शब्द विच बड़े सोहने ढंग नाल बयान कीता, ध्यान नाल सुनना। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलत मन भयो पंग। मेरा मन पिंगला हो गया, पैर टूट गए ने, एदी भटकना मिट गई है। मेरा चित ना चलत, नहीं चल रहा। पता है चंचल दे अर्थ की ने? चल चल चल चल, हर वक्त ही चलता है। तन बैठा है ता भी मन चलता ही रहता है, चंचल है। चल चल चलता चलता चलता, रुकता ही नहीं, किधर टिकता ही नहीं। स्वामी रामानंदा बसंत राग दा शब्द कहिंदे ने, मन मेरा पिंगला हो गया। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलत मन भयो पंग। एक दिवस मन भई उमंग, गस चंदन चोआ बहुत सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए। टिके होया मन सब कुछ समझ लेंदा है, भटकना जद मिट जाए। दो गल्लां धार्मिक जगत दे बिल्कुल गलत कहियां जांदियां ने, भई मन नू शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, गलत। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले कितों शुद्ध कर लोगे, किवें कर लोगे? फिर दूजी गल करदे ने मन नू एकागर करके बाणी पढ़ो। यकीन जानो इन्हां नू मन दी समझ नहीं। इंज कहना चाहिए बाणी जपो ताकि मन एकागर होवे। पहले कितों एकागर हो जाएगा? ये मन नू एकागर करके बाणी पढ़ो, बिल्कुल गलत। इन्हां लोगों नू मन दी समझ ही नहीं है। बाणी जपो ताकि मन एकागर होवे, मन नू शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ। हद हो गई। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किवें शुद्ध हो जाएगा? बिना सत्संग तो किवें जो है शुद्ध हो जाएगा? बिन भागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल भरी जे जी। इतने मैला हो जाएगा उल्टा। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा। कबीर कहिंदे ने पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। ऐसा बाणी दा बाण लगे है पैरां तो पिंगला हो गया, भटकना मिट गए। इनू एक उर्दू दे माया नाज शायर ने इंज कह लो टीका ही कीता होगा। जरूर इना भगतां दे ख्याल उसने सुने होने ने, या चलो उसका अपना निजी अनुभव होवे। मिर्जा गालिब कहिंदा है मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है। कहिंदा जिहड़ा मेरा पैर टूट गया ना, इस टुटे पैर दा मेरे ते बड़ा एहसान है, मैं इसका एहसान मन रहा जो मेरा पैर टूट गया। हद हो गई। पैर टूट गया ते टुटे पैर दा एहसान, शुकराना पिया करदा। अगे दसदा हो मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहिंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करा मैं बोल नहीं सकता, गूंगा समझा नहीं सकता। बिसम बिसम बिसमे ही भैये लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आइये ज्यो चाख गूंगा मुस्कारे। समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, हर दिल दे च रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो गीत है, इनू हर सांस ते नहीं गाया जा सकता। ये ओ राग है, ये ओ गीत है, जिदे वासे विशेष वाजा चाहिदा, विशेष साज चाहिदा है। भाव हर दिल दे चे नगमा नहीं गूंजदा। पहले दिल दी बणतर बनानी पैंदी है सत्संग कर करके कर करके कर करके। तो मैं अर्ज करा उदास होण दे निराश होण दे तीन कारण ने। पहला बड़ा गहरा सरोता होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा अपनी अकल तो चोट खा लवे, बड़ा ही सियाणा होवे, हर गल नू बड़ी गहराई नाल लैंदा होवे। बीमार असी भी देखदे आ, पर इक्को ही दिन महात्मा बुद्ध ने जिहदा नां सिधारथ सी बीमार देखिया, बस दिल चोट खा गया। मुर्दे असी भी देखदे आ, इक्को दिन एक लाश देखी हिरदा चोट खा गया। बुढ़े मनुख असी भी देखते हैं, जईफ ज्यादा उम्र वाले असी 90 साल दे असी भी देखते हैं। उन्हें एक दिन बुढ़ा मनुख देखा है, सड़क क्रॉस कर रहा सी, लाठी दे आसरे थे, दिल चोट कर गया। अकल इतनी बारीक, इनू कहने हिंदी संवेदना। ऐसे मनुख दे अंदर संवेदना बहुत आती है, हर गल नू छोटी दी छोटी घटना नू भी बहुत वड्डे रूप दे महसूस करता है। संवेदना, असी भी देखते हैं बुढ़िया नू, असी भी देखते हैं बीमारा नू, खुद भी बीमार होंदे हैं, असी भी मुरदिया नू देखे होवेगा, इक्को ही दफा देख के चोट लग गई। या ते अपनी अकल इतनी महान होवे मनुख अकल तो चोट खा जाए, तो अकल तो चोट खा के भी मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। तीसरा, संसार तो कोई चोट लग जाए, बहुत वड्डा धनाढ्य सी दिवालिया हो गया है, बड़ी इज्जत मान मर्यादा से सरेआम बेइज्जती हो गई है, बड़ी पद प्रतिष्ठा से शक्ति से कुछ भी नहीं रहा, ऐसी हालत विच भी दिल चोट खा जाता है और निराश होके मनुख उदास हो जाता है। उदास होने दे निराश होने दे तीन कारण ने। प्रथम, गुरु दा शब्द चोट कर जाए, सत्संगी होवे, श्रोता होवे। दूसरा, अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा, संसार तो कोई दुख बहुत वड्डे रूप में चोट कर जाए। हुण मैं इसनों इस तरह बयान करा, जो अजे तक पूर्ण तौर ते निराश नहीं, उदास नहीं, ये कोई गहरा सरोता नहीं कि इनू शब्द ने चोट की होवे। दूसरा, ये कोई इतना अकलमंद भी नहीं गुस्ताखी माफ कि इनू अपनी अकल ही चोट कर जाए। तीसरा, अजे संसार तो भी इसनों कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, नहीं तो मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। प्रथम, सत्संग विच आउंदिया आउंदिया एक दिन शब्द चोट कर गया, उदास हो गया, निराश हो गया, अकल तो चोट खा के उदास हो गया, निराश हो गया। अकल इतनी महान, संसार छोटा हो गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो ये संबंध च मैं कुछ बोल थोड़े सामने रखा। जैसे महाराज कहते ने, आवन जानक खेल बनाया, अज्ञाकारी की नहीं माया। बहुत महान बारीक बीन मनुख नो सब तमाशा प्रतीत होता, खेल कुछ भी नहीं। कितने लहर बन रही ने, मिट रही ने, बन रही ने, मिट रही ने, संसार बन रहा है, मिट रहा है, मनुख जम रहे ने, मर रहे ने, जीव जम रहे ने, मर रहे ने, तमाशा खेल। अकल महान होवे मनुख छेती उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, अकल तो चोट खा के। इस संबंध च भी मैं गालिब दी नजम थोड़े सामने रखा। वो कहिंदा है, बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की ये बच्चियां दा तमाशा, बच्चियां दे खिडौने और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तिफल बच्चे नू कहिंदे ने, इतफाल बच्चियां दी जमा बहुवचन। बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की है छोटे बच्चियां दा तमाशा, खिडौणिया दी खेल। बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दिन रात बच्चियां दा तमाशा हो रहा है, सवेरे खा लिया, शामी खा लिया, फिर सौ गया, फिर दूजे दिन फिर वही कुछ कीता है जो कुछ रोज करते हैं, सब कुछ रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन चल रही है, पुनरुक्ति चल रही है। एक खेल है औरंग सुलेमां मेरे नजदीक, तख्ते सुलेमां नहीं सिंघासन, जिदे लई दुनिया कितने पापड़ बेलदी है। कोई पिंड दा चौधरी बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना, कितने पापड़ लोकी बेल दे। कहिंदे बच्चियां दा तमाशा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗ, ਔਰੰਗ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਔਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਤਖਤ ਇਹਨੂੰ ਮਸਨਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਨਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 22 ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਨਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਮਸਨਦ, ਇਹ ਮਸਨਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਤਖ਼ਤ ਜਿਸ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਔਰੰਗ, ਛੋਟਾ ਤਖ਼ਤ ਜਿਸ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬੈਠਣ ਮਸਨਦ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਯੂਦੀਨ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਮ, ਵੈਸੇ ਉਸਦਾ ਮਯੂਦੀਨ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਵੀ ਲੋਕ, ਗੁਣੀ ਲੋਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲੋਸਫਰ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਤਖੱਲੁਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਸ ਨਾਮ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਪਨਾਮ, ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਹੈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ। ਜੈਸੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਅਕਬਰ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਕਬ ਰੱਖਿਆ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਅਕਬਰ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਉਸਦਾ ਤਖੱਲੁਸ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਜੋ ਜੋਧਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜੋਧਾਂ ਬਾਈ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਏ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਆਪਣੇ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬੇਗਮ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ, ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਚ, ਜਹਾਂਗੀਰ। ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਸਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਏ ਤਾਏ, ਇਸਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਦੋਗਲਾ ਸੀ, ਜੋਧਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਖੁਰਮ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਹੇ ਜਹਾਂ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਿਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਯੂਦੀਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਔਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਤਖਤ, ਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੁਰਤ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਜ਼ੇਬਨ ਤੁਰਾ ਨਾਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾ ਬਾਇਦ ਫਰੇਬ, ਐ ਮਯੂਦੀਨ ਇਹ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਤਖਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਖਤ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਖਤ ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰ, ਤੁਰਾ ਤਰਕ ਤਾਜ਼ੀ ਬ ਮਕਰੋ ਰਾਇਆ, ਮਰਾ ਚਾਰਾ ਸਾਜ਼ੀ ਬ ਸਿਦਕੋ ਸਫਾ, ਨਾ ਜ਼ੇਬਤ ਤੋਰਾ ਨਾਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾ ਬਾਇਦ ਫਰੇਬ, ਮਹਾਂ ਫਰੇਬੀ ਹੈ ਤੋ, ਝੂਠਾ ਹੈ, ਚੜਾਕ ਹੈ। ਹਮੋ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨਵਰ, ਨਾ ਸਿਖਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰ ਦਹਾਨੇ ਦਿਗਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਜੁਰਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਔਰੰਗ। ਵੱਡਾ ਤਖਤ, ਛੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸਨਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਮਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਸਨਦ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਤਖਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਇਤਨੀ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਤਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਮਸੰਦ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਖਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਹੀ ਮਸੰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੋਟਾ ਤਖਤ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਤਖਤ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਖਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਸਨ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਇਹ ਔਰੰਗ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਅਜਾਜ ਮਸੀਹਾ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ, ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅੰਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਲਿਬ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਕਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾ ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਪਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਕੋਲ, ਨਾ ਸੈਯਦ ਕੋਲ, ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਸਿੱਖ ਧੱਕੇ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਈਂ, ਇਹ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਂਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਗੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਨਿਕਲਦਾ, ਨੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਿਆ। ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਭ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਈ ਰੇ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਅਵਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਿਚ ਹਾਥ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ, ਮਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੇ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਅਵਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਿਚ ਹਾਥ ਹੈ, ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਪ, ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਲਾਗ ਸਕੇ ਨਾ ਬਿਨ ਹਰ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਵਰ ਨਾ ਸਰਾਪ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦੁੱਖ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਪਕੜ ਲਏਗਾ? ਇਹ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਦਾ और जिन्ने चिर तक मनुख वहम तो माद दे चक्कर च पिया होया है, समझ ज्यादा नहीं है, वो इन्हों चक्कर च पाएगा। गालिब कहिंदा है ऐ ईसा, ये जो तू अंधे नू अखां दे दित्तियां, बीमार नू तंदुरुस्त कर दिता, मुर्दे नू जिंदा कर दिता, मैं तेरी इस सिद्धि तो भी प्रभावित नहीं। ऐ भी बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं है। जिसनों तू जिंदा किया फिर नहीं मरिया, तो जे फिर मर गया तो बच्चों के तमाशे तू भी करता रहा, एवं खेडा खेडता रहा बच्चों के खिडौने, सीधी सीधी खिडौना। अकल महान होवे, मनुख इन्हां चीजां तो प्रभावित नहीं आता, अकल चोट कर जाती है, मनुख सब कुछ तो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, या फिर संसार चोट कर जाए, बहुत वड्डी चोट कर जाए। बड़ा धनाढ़ सी दिवालिया हो गए, बड़ा समृद्ध सी बड़ा कमजोर हो गए, बड़ी मान प्रतिष्ठा सी बड़ी बेइज्जती हो गई, सरेआम पग ले गई। चोट खा के मनुख निराश हो सकता है, उदास हो सकता है। हुण ध्यान नाल सुनना, समाप्ति करा। निराश मनुख उदास मनुख तीन तरह का फैसला कर सकता है। उदास ते निराश भी तीन कारणा करके होवेगा, शब्द चोट कर जाए, अपनी अकल चोट कर जाए, या संसार तो कोई चोट खा जाए। चोट खादा होया मनुख निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। निराश ते उदास फिर तीन तरह का फैसला करेगा। इनू अध्यात्मी पुरुष इंज कहते ने, आत्म क्रांति, आत्म हत्या, आत्म विस्मृति। खुद नू बदलना, खुद नू खत्म करना, खुद नू भुलाना, इन्हां तिन्नां च एक काम जरूर करेगा। आत्म क्रांति, शब्द तो जिसने चोट खा दी है, आत्म क्रांति, खुद नू बदलेगा, कहेगा ऐ गुरु अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण तेरे ढंग नाल जीवां। अज तक मैं अपने ढंग नाल खांदा पींदा रहा, हुण जो कुछ तू कहिंदा मैं उस तरीके नाल चला। हुण मैं अपना रहन सहन, अपनी तर्जे जिंदगी ऐ गुरु तेरे मुताबिक करांगा, जो तू कहिंदा। इहनूं कहिंदे ने आत्म क्रांति, खुद नू बदलना। आत्म हत्या, सुसाइड करना, खुद नू खत्म करना। निराश हो गया, बिल्कुल उदास हो गया, हो सकता है सुसाइड कर लवे। सारी दुनिया च खुदकशी मौजूद है, इस देश च सब तो ज्यादा है। यह भी मैं अर्ज कर दिया, आंकड़े जिहड़े मैं पढ़े ने दिनवान, एक मैगजीन है भारत दे च निकल रही मंथली, उहदे च आंकड़े पढ़ के मैं दंग रह गया। सब तो शक्ति संपन्न देश अमेरिका, पर बाकी मुल्कां दे हिसाब नाल सब तो ज्यादा सुसाइड करने वाले लोग इत्थे ने, खुदकशी इत्थे करदे ने, और सब तो ज्यादा पागल भी इत्थे। गुस्ताखी माफ, क्षमा दी याचना। आत्म क्रांति करेगा, या आत्म हत्या करेगा, या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नू भुलाने की कोशिश करेगा, दिन रात शराब के नशे ही रहेगा, ड्रग्स खाएगा, अपने आप नू भुलाएगा, चेते कुछ भी ना आवे। क्यों चेते आएगा? तो निराश है, उदास है, उदासी च किस तरह रवे? सब कुछ तो निराश है, किस तरह रवे? निराश होया मनुख, उदास होया मनुख, या तो आत्म क्रांति करेगा, खुद नू बदलेगा, या आत्म हत्या करेगा, खुद नू खत्म करेगा, या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नू भुलाएगा। शब्द तो जिसनों चोट लगी है सत्संग दे च, ये आत्महत्या नहीं करेगा, ये आत्म विस्मृति भी नहीं करेगा, ये आत्म क्रांति करेगा। ऐ गुरु अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा। अज तक जिसने इस तरह का फैसला नहीं किया, शब्द ने अजे चोट नहीं की थी उसनों, ये भी मैच कर दे। उदास ते निराश अपनी अकल तो होया, या संसार तो चोट खा के होया है, तो सही फैसला करने की थां ते गलत फैसला भी कर सकता है। किसी किसी ने सही फैसला भी किया, आत्म क्रांति में कल जिक्र करांगा, उन्हें खुद नू बदले है, लेकिन ऐसा भी आंदा है खुद नू भुलाने की कोशिश करेगा, दिन रात नशे चूण, या सुसाइड करेगा, आत्महत्या करेगा, खुदकशी करेगा। जिन्हें आत्म क्रांति दी नहीं सोची, जिन्हें आत्महत्या दी नहीं सोची, जिन्हें आत्म विस्मृति दी नहीं सोची, अजे इसनू चोट नहीं लगी, अजे ना निराश होया, ਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਇਆ ਕਰੋ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੀਅਰ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਬਾਰਡਰ ਵਿਦ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਮ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ 8 ਏਕਰਸ ਅਤੇ 100,000 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਨਰਸਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਬੀ ਯੋਰ ਓਨ ਬੌਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 5 ਬੈਡਰੂਮ ਹਾਊਸ, ਟੋਟਲੀ ਰੀਮਾਡਲ ਵਿਦ ਇੰਕਰਨ ਆਊਟਡੋਰ ਪੂਲ, ਰੀਟੇਲ ਸ਼ਾਪ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਨੂੰ ਐਟ 604-351-51

गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंदाजन 10-11 दिन तो दास एक लड़ीवार विचार आपनु सरवण करा रहे है। सो दर कहा सो घर कहा जितबे सर्व समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण आरे। ज्ञानी भूपेंद्र सिंह जी थानू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत बारे विस्तार सहित इतिहास के पन्नियां दे चों बड़े कुछ असलूबे नाल सरवण करा रहे सन। सिर्फ एक नुक्ता रखे मैं अगे चला। आद काल तो सत ते सता दी बनी नहीं है। करीबन करीबन सता सत नू पसंद ही नहीं कर दी रही क्योंकि सता खड़ी च उठते है, फरेब ते खड़ी है, धोखे ते खड़ी है, दूजे नू जेतन ते खड़ी है। इस वास्ते वक्ती तौर पे ते झूठ झूठ जड़ा है जितदा रहा है, जितदा रहा। कई कई झूठी है, राम सच्चे ने पर कई कई ने 14 साल का वनवास दे ही दिता है। झूठ दी जित दिसदी पई है। कंस जालम है, झूठा है। कृष्ण सतवादी ने उहदे माता पिता देवकी ते वासदेव सतवादी ने पर कंस ने ते जेल दे जपाई दिता। वक्ती तौर ते झूठ दी जित होंदी है। प्रहलाद सच ते खड़ा है, हरनाकश झूठ ते खड़ा है। पर जद प्रहलाद नू भुखा प्यासा जेल दे च रखे होवेगा, पहाड़ां तो सुट्टिया होवेगा, तरह तरह दे तसीहे दिते होणगे, साफ दिसदा पिया होवेगा झूठ दी जित हो गई, जित हो गई। इसे तरीके दे नाल होर अगे चलो। ईसा सच ते खड़े ने पर सच ते सूली ते टंगे होया ते झूठ तमाशा पिया देखदा है, झूठ सिंघासन ते। झूठ सिंघासन ते बैठा है, सच दा रैबर सुकरात उन्हों जहर दा प्याला दे के तड़पा के मारिया जा रहा है। दिसदा वक्ती तौर ते झूठ दी जित आउंदी है। बाबर सिंघासन ते बैठा है, गुरु नानक बाबल दी जेल देचना है। जहांगीर सिंघासन ते बैठा है, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी देना है। जहांगीर सिंघासन ते बैठा है, छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ग्वालियर दी जेल दे च बंद ने। झूठ ते सिंघासन ते बैठा है झूठा औरंगजेब, सच चांदनी चौंक दे शहीद हो रहे, जलाद गर्दन उड़ा रहे हैं।

पेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सचिया।

तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सच्यार तौलै उपर केता पार धरती होर परै होर होर तिस्ते पार तलै कवन जोर जी

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर

जो तुद पावै साई फलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाक खाए।

जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो असंख कै।

हितवार ना जोगी जान रुत महा ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आख है एक दू एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक जे को आपो जाने अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात सेंस अठारह कहन कतेबा असलू एक ता

किया दुख भूख सदमार, ए बेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाएक आखन पाए, ओ जाने।

आखे पड़े करे वख्यान, आखे ब्रह्मे आखे इंद, आखे गोपी तै गोविंद, आखे ईश्वर आखे सिद्ध, आखे केते कीते बुद्ध, आखे दानव आखे देव, आखे सोर नार मुन जन सेव, केते आखे आखन पाए, केते कह कह उठ उठ जाए, एते कीते होर करे ता आख न सके केई के, जेवड पावे एवड होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल विगान, ता लिखिया सिर गवार अंगवार, सो दर के हा सो कर के हा, जित वै सर्व समाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते वामन हारे, केते राग प्री सो कहियन, केते गाम नहारे, गावे तुनु पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे, गावे इंद इंदासन बैठे देवते अंदर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति स्थिति संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न ईश्वर जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले, गाव रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले, गावे जोध महामलसूरा, गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तारे, सही तुनु गावे जो तुत पावन, रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहेब, साचा साची नाई, हैपी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती, कर कर जिन सी माया, जिन उपाई, कर कर वेख कीता अपना, जिव तिस दी वड्याई, जो तिस पावे सोई करसी, हुक्म न करना जाई, सो पात सहा सहा पत साहेब, नानक रहंद जाई, मुंदा संतोख सरम पत चोली, ध्यान की करो बबूत, खिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, भूत ज्ञान दया पंडारन, कट कट वाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद सिद्ध अवरा

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जाप श्रीमुख वागपात सही दसवीं छपे चंतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जाति हर पात नहीं जाय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश संतोष कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत मंत्रन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अभेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं अडामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अभीते नमस्तं अभाये नमस्तं अडाये नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगाजे नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सुएके नमस्तं अनेके नमस्तं अभूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्भर्मे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्भेषे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्धाते नमस्तं निर्घाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाय नमस्तं अभाय नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं संयोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अभंगे नमस्तं अगमे नमस्तोत्तरमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशं अदेशे नमस्तं अभेशे नमस्तं नितामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वध्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्वथापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तं अभेवे नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्व दंदे नमो सत वंदे नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्भाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तत रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री चांतो प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है अमीक है रफीक है अदंद है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छा

कालांकन अनुभूत अंग अभावंगत में तो पार गुण गण उदार मुन गण गुरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदि श्री तरम सर्वा बरनाडिये अंडंड बांडिये चाचरी चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निरनामे अकामे व्यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभेज वेश के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभेज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत करने के राजम प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतं कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिय के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाव के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिया के सर्वत्र थापिया के सर्वत्र पाने के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलामे सली खुदा में गनी बुल शिकस्ते गरीब उल पुलस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकश स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्वाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिका में त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अछज है छूत है कि नरकम प्रनाश है प्रचुर प्रवास है निरकत प्रवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चात्री छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिख है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर्क नासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕੇ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕੇ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਰ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇ ਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਗਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਭੂਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਅਨੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣ ਗਨ ਮੁਦਾਮ ਹਰ ਬਰ ਅਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭੰਜ ਅਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮਨ ਮਨ ਸੁਨਾਮ ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ਅਨਭਉ ਅਨਾਸ ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਣ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਨ ਮੁਦਾਮ ਅਨਛਿਜ ਅੰਗ ਆਸਾਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਪਾਰ ਗਤ ਮਿਤ ਉਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨਭਉ ਅਨਾਸ ਤ੍ਰਿਤ ਤਰ ਤੁਰਾਸ ਆ ਜਾਨ ਵਾ ਏ ਕੈ ਸਦਾ ਓਂਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਕਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਨਛਿਜ ਗਾਤ ਅਜਨਾਬਾਤ ਅਨਛੰਜ ਗਾਤ ਅਨਰੰਜ ਬਾਤ ਅਨਟੁੰਡ ਭੰਡਾਰ ਅਨਠੰਡ ਅਪਾਰ ਆ ਢੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ ਅਨ ਬਰਨ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮੰਤ ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਸ਼ੰਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨਾਲੇ ਹੈ ਹਰ ਕਾਲੇ ਹੈ ਕਲਖੰਡਲ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਵਾਰਨ ਹੈ ਧ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਰਨ ਹੈ ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਜਗ ਜਾਨੀ ਹੈ ਸਰਬੰਕਾਰ ਹੈ ਸਰਬੰਕਾਰ ਹੈ ਸਰਵਪਾਸੀ ਹੈ ਸਰਵਨਾਸੀ ਹੈ ਕਰਨਾਕਰ ਹੈ ਬਿਸਵੰਬਰ ਹੈ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਸ ਹੈ ਕਲਖੰਡਸ ਹੈ ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰਨਾਕਰ ਹੈ ਅਜਪਾਜਪ ਹੈ ਅਤਪਾਤਵ ਹੈ ਅਗਰਤਾਕ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਕਰਨਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਗਰਤਾਕ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਤਰਨੀ ਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਜਬਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਰ ਨਾਇਕ ਹੈ ਕਲਗਾਇਕ ਹੈ ਬਿਸਵੰਬਰ ਹੈ ਕਰਨਾਲਯ ਹੈ ਨਿਰਮ ਨਾਇਕ ਹੈ ਸਰੂਪਾਇਕ ਹੈ ਭਵ ਪੰਜਨ ਹੈ ਅਰਗੰਜਨ ਹੈ ਰਵਤਾਪਨ ਹੈ ਜਪ ਜਾਪਨ ਹੈ ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਵਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਤਾਕਰ ਹੈ ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ ਸਰਵਾਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ ਪਜਾਂਗ ਪੁਰਾ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸੂਰ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਸੰਗਤਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਪਰੰਗ ਤਤੰਗ ਅਤੰਗ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ ਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ ਨਮੋ ਜੁਦ ਜੁਦੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਪੋਜ ਪੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਕਲੇ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਅਨਾਦ ਭੂਤੇ ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਕਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ ਨਮੋ ਆਸੇ ਆਸੇ ਨਮੋ ਬਾਂਗ ਬੰਕੇ ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤਰਭੰਗੀ ਦਰਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ ਏਕ ਅਸ਼੍ਰੀ ਛੰਦ ਅਜੈ ਅਲੈ ਅਭੈ ਅਭੈ ਅਭੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਅਕਾਸ ਅਗੰਜ ਭੰਜ ਅਲਖ ਅਪਖ ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਅਲੇਖ ਅਭੇਖ ਅਨਾਮ ਅਕਾਮ ਅਗਾ ਅਡਾ ਅਨਾਥੇ ਪਰਮਾਥੇ ਅਜੂਨੀ ਅਮੂਨੀ ਨ ਰਾਗੇ ਨ ਰੰਗੇ ਨ ਰੂਪੇ ਨ ਰੇਖੇ ਅਕਰਮੰਗ ਅਭਰਮੰਗ ਅਗਜੇ ਅਲੇਖੇ ਪੁਜਾਂਗ ਪ੍ਰਜਾ ਛੰਦ ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸੁਮਸਤਰ ਪ੍ਰਨਾਸੇ ਅਗੰਜਨ ਅਨਾਮੇ ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਰਕਾਮੰਗ ਬਭੂਤੇ ਸੁਮਸਤੰਗ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਸੋ ਧਰਮੰਗ ਪ੍ਰਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਕਰੀਮਲ ਕੁਰੰਦਾ ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਇਬ ਬਭੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ਹਰਿਯੰ ਕਰਿਯੰ ਕਰੀਮ ਰਹੀਮੇ ਚਤਰ ਚਕਰਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੁਯੰਬੰ ਸੁਮੰਗ ਸਰਵਦਾ ਸਰਵਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਯਾਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗ ਭੂਤੇ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਯਾਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗ ਅੰਗ ਭੂਤੇ
तो प्रसाद सोइए श्राव समूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधायक सन समूह अवनिमति के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाय कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते में तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुद पहुन के गुण कुजात निवारे पारी प्रजान को पूप बलि बन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पूप अंधकोना के पाएं बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मदंग निगारे गुजत गुण ज्ञान के सुंदर हंसत है राज हजारे पूत पवेख पवान के पूप कौन कने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जत हार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है सुध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान दलेंगे।

0: श्रीपद श्री भगवान कृपा त्याग जहान निदान चलेंगे। भीर अपार बड़े बड़े आर अवचार इसार की तार बछैया, तोर देश बुलंद बवासन माते गजान के मान मलैया, गाड़े गड़ान के तोरण हार सुबातन ही चकचार लवैया। साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया, दानव देव फिनन निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे, जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रताप अनबार जय तुन पापन के बो पुंज कपेंगे, सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सबै अब लोग जपेंगे। मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे, कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वम्बर साज भरेंगे। ब्रह्म हेश्वर विष्णु सची पत अंत बसे जम्फास परेंगे, जे नर श्री पत के प्रस है भगते नर फेर न दे तरेंगे। काम भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो भगत ध्यान लगायो, नहात फिरयो लिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गो आयो, बास कियो बखियान सु बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो, साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो, कहूं ले पायन पुत्रयो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो, कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो, को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबै तुम कावो, आप हाथ दे मोय बचावो, सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर इच्छा निज कर दे करिया, सब बैरन को आज संगरिया, पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ, जो बर जाओ सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास नवरिया, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजो करियो रक्षा, राख लो

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, देते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरे निरालम, जानत वेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पेदा, जा को पेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महामूड किछ पेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, नंकार का चिंत नहीं पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह भी सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी, कहो फूर राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो संकर्या कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, दिन के दुष्ट दुख है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न।

0: पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने यह बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ा बल दिया ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदियां होया थक जावा, सिर जुला मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खड़िया नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक ले। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द ए भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख, परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती हुई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई बारी अर्ज करना हुंना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी दिगसह सहज सुभाई। हुण कमल दा फुल जिहड़ा है ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा है ओ आसमान विच है। दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी ओहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओह किहड़ी ताकत है, ओह किहड़ी मिकना ती शक्ति है कि जेड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े होए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने ए ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनों दी दूरी है। ना ता चकोर नू किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जा किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उनू सिखाया कि आओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहा प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच ऊ पैदा होए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालां कि इथो तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नू देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा आसमान ते एक टिक ओनू नजर टिका के देख दिए, चंद्रमा जदों ए अपनी थां सारी रात बदलदा है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नू अपने जिस्म नू कमाना है, उदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नू उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आना है। चकोर अपने पैरां नू सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नू ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़ती है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्हू अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नू झुका के अपनी पिठ ते ला लेंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नू जे किते मनुख समझे उसे खिच नू ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचो अर्ज कर रहे, भाई साहब ने पहला बचन किया चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लानी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखा ले। हुण इत्थे पावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है। दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने ता अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण एक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओ केड़ी खिच है जेड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नू देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, नेहो कवल जल जानिए खेड़ मूह बखाले। खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं ओ खिच पानी विचों उन्हूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन किया, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उन्हूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओ असमान दे उते ओ धरती दे उते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारिए सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपीआ कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदो खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा भादों दा उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा, ओ भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। ओदे विच वी एक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी भी एक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी एक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है। प्यारिया के पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड़ के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नूं विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए सच जाणो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। एक ऐसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिआं बहुत सोहणी पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले न्यू कवल जन जानिया खिड़ मूह बखाले मोर बाबी ए बोल दे वेख बदल काले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निब है नाले के मरीद दी ते पीर दी जेड़ी प्रीत है ओ तोड़ निबण वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना, गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगतां सानूं दसियां। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है, उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने, रहाओ दे बचन ने, मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, हे मेरे मना की परमात्मा नु प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है, की तू बंधना तो मुक्त हो सकना है परमात्मा नु प्रेम करन तो बिना। मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रविया है ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नू फिर समझिए, मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउंदी। वैसे तां जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असी वरतने आ, जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा ली प्रीत नहीं प्यार नहीं ते गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जेड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो ओ तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुर्दे सड़ के किसे मिट्टी दा ढेर हो जा। ओ तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्यार है, मरे हुए शरीर विच कोई हरकत नहीं ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं सच जाने ओ खाए भी पीए भी बोले भी पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है, ओ मुर्दा है जे उस अंदर प्रीत नहीं ता प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत ए सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कई है नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, मृतक कई है नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है, उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं। ओ मुर्दे नु जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है, कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना, बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने, उन्होंने जोबन दी गल कीती। हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा दी एक बड़ी वड्डी दात है ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होण दे बावजूद उस दे अंदर प्यारे दी प्रीत नहीं ते मेरे तन गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है, प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए, किन्ने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं। डर तां उदो है जदो वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनिया गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है, पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा, ऐ मिनसान तू वजूद विच ता आया है कि परमात्मा दी इबादत करें परमात्मा दी बंदगी करें, जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें आसमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटना बंदगी करके ही जिंदगी है, जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा, वगर ने जो के चुनी आमदन नाबूद मरा। जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मेनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं, क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जे, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती कीती ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचो पुछ लईए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्होंने बिच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए। फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए, के किते जवानी प्यार तो बिना ना चली जाए, साई नू ने करन तो बिना ना व्यर्थ चली जाए। सच जानो उस महापुरुष दी कली जवानी ही नहीं जोबन विच नहीं, वो ता अपने बचपन तो ही रब नू इश्क करन लग पए। बाबा फरीद साहब अजे बचपना है ते कुरान उना नू जबानी कंठ हो गई है, अजे बचपना है कि कितना कितना समा रब दी इबादत भी जुड़े रहिंदे ने। आखर वो कैसी परम अवस्था मिली कि जिदन जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी अपने मुंह दे विच पाई ते उस मिट्टी विचो भी शक्कर वर्गा स्वाद आ गया। क्यों? अपना अंदर इन्ना कु मिठा हो चुका सी, आप मिठास दे भंडारे बन चुके सन, ते हकीकत वे असी कहांगे मिट्टी मिट्टी हो गई, जमीन ते मिट्टी मिट्टी नहीं होई, असल विच बाबा जी दी रसना दी मिठास करके मिट्टी भी मिट्टी हो गई। उस महापुरुष वो आप शक्कर गंज है, शक्कर दे खजाने ने। उस महापुरुष ने क्या कहन लगे, जोबन चला जाए प्रीत तो बिना, जवानी चली जाए प्यार तो बिना, जिंदगी दा समा निकल जाए प्रीत तो बिना, ते ए अंदर नू दुख पासदा है। केवल जोबन नहीं अपने अंतले समय भी वो महापुरुष रब दी इबादत भी जुड़िया है, खुदा दी इबादत भी जुड़िया है, ते जदो नमाज अदा पे करदे ने अचनचेत गशी पई है, बेहोश होके जमीन ते गिर गए, सजदा पूरी तरह कर ना सके। मुरीदा ने बाबा फरीद साहब जी नू संभालिया, संभालन तो बाद उन्होंने बाबा जी दे जदो चलिया पैरां दियां चशिया, उन्होंने खत पकड़ के खत पैर कुटे नपे ते उठ के बैठ गए, ते पहला प्रश्न सी उस महापुरुष ठीक है, कहन लगे नमाज अदा हो गई, मेरा नेम निब गया, बंदगी वाला समा सही सफल हो गया। बैठे हुए मरीद ने क्या बाबा साहेब नमाज पूरी तौर ते अदा ना हो सकी पूर्ण तौर ते, आप इको दम जमीन ते डिग पे। कहन लगे लियाओ पानी, कराओ मेरा वजू, मैं परत के फिर खुदा दी याद भी जुड़ना चाहना, मैं नमाज अदा करनी चाहना। ते किसे ने उत्थे प्रश्न कर दिता सी कि बाबा साहेब सारी जिंदगी ता अल्लाह ताला दी विरद विच ओदे जिक्र विच ओदी याद विच बतीत होई, हुण जे नई नमाज हो रही शरीर खेचल विच है, तन नू थोड़ा बहुता खेद है, हुण अज तुसी ए रहन दियो विश्राम करो। उन्होंने उस वेले पिछे मुड़ के कहा, कहन लगे तेनू की पता मेरा अंदर किथे खलोता होया है, तेनू केवल मेरी बार दी क्रिया दिसी है कि मैं इन्ने साल रब दी इबादत कीती, इन्ने साल मैं परमात्मा दा जिक्र कीता, पर तेनू की पता मैं अंदरों किथे टिकियावां। लियाओ पानी, लियाओ आव, ते मैं वजू करके परमात्मा दी याद भी जुड़ा, रब दी याद भी जुड़ा। वो महापुरुष कह रहे ने कि वक्त चला जाए प्रीत तो बिना ते व्यर्थ है। बाबा नानक साहब कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, प्यार तो बिना तू प्रेम तो बिना तेरी बंद खलासी निखोनी। हुण प्रेम बद्धा चक्की कर्म नहीं, प्रेम ता एक अंदर दी खिच है, प्रेम ता आपां वारन वाली एक अंदर दी बिरती है। ते धन गुरु नानक साहब कृपालू ने अपनी अमृत बाणी विच ए उदाहरणा दित्तियां, उस अष्टपदी दी पहली एग्जाम्पल पहली उदाहरण ए वे मैं अर्ज कर रहा, नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिबलाई। कैसी भगती कीती, केवल ता केवल चौंकड़ा मार के नहीं, अपने आप नूं पूर्ण तौर ते रब दे चरणां विच उन्हां ने फिदा कर दिता, उन्हां ने समर्पित कर दिता। बाबा नानक जी ने उस फिदा होण वालियां कुछ उदाहरणां नूं अपनी बाणी विच दर्ज कर दिता। पुछया, सच्चे पातशाह ये तां आप कह रहे हो कि प्रेम तो बिना बंद खलासी नहीं, पर यह दसो प्रीत कैसे करिए, प्यार किहो जिहा करिए। कृपालू दाता जी ने पहला प्रमाण दिता है, कहिंदे ने कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है। सिर्फ उदाहरण समझण लई है, अपनी जिंदगी दे टुकाण वास्ते ना, के ए उदाहरण केवल विद्वता दी अंदर दी खौ नूं प्रगट करन लई। कथा दा मतलब है कि विचार के, सुन के, पढ़ के, घो के उहदे अनुसार अपना अमली जीवन भी ढालना शुरू कर देना। कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है, पानी दे विच निक्कियां निक्कियां तरंगा पैदा होईयां, लहरां पैदा होईयां, ते जदों पानी दी लहर इकोदम थोड़ी जी हवा नाल तेज होई ते कमल दी नाड़, कमल दी निक्के जे बूटे दे तने नूं वज्जी, कमल दी नाली नूं वज्जन दी देर सी पानी दी लहर, ते कमल जिहड़ा जड़ तो लै के फुल तक पूर्ण तौर ते कंब गया। इकोदम उस लहर ने कमल नूं पछाड़िया, कदी उहनूं लहर धक्का मार के खब्बे, कदी सज्जे, उन्हों सारा दिन लहर अपने ठोकरां दे वास विच केवल अपने ठोकरां नाल खब्बे सज्जे नूं धक्कदी रही। ते बाबा जी ने उत्थे क्या कहन लगे, ओ मना जे प्रेमा भगती करनी आ ते इस कमल फुल तो सिख रब नूं प्रीत किवें करी दी है। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, किहो जिहा प्यार होवे, प्यार जिहड़ा गिलवे शिके नहीं करदा हुंदा, प्यार कदी उलामे नहीं दिंदा हुंदा। ते सच जाणियो जेड़ा बंदा मित्रता करदिया होया भी उलामे गिले शिकवे करदा, वह कदी प्रेमी नहीं हो सकता, वह कदी प्यारा नहीं हो सकता। कहन लगे इस कमल दे फुल नूं पुछ के प्रेमा भगती की है। हजूर ने पुछया कमल दे फुल नूं, ते बाणी विच गल्लां दर्ज कर दित्तियां कि ए कमल दे फुल तेनू रब ने सब तो पहला गुण यह दिता है, तू चिक्कड़ विच रह के भी निर्लेप है। दूजा गुण तेनू परमात्मा ने दिता है कि तेरे कुल कोमलता है। तीजा गुण तेनू दिता है तेरे कुल सुगंधी है। चौथा गुण तेनू दिता है तेरे विच खिच है, तू करोड़ा को दूर बैठे सूरज नाल भी गल्ला प्या करना, जिदे कुल सुगंधी होवे, जिदे कुल निर्लेपता होवे, जिदे कुल अपना सुहापन होवे, जिदे कुल दूर टिके हुए प्रेमी नू प्यार करन दी भी जांच होवे, की लोड़े इस मैले जे पानी दिया ठोकरा खान दी। ए पानी उठदा सवेरे लहरा बन के तेरे नाली नू, तेरे इस तने नू रोज ए ठोकरा मार दे, छड़ परा हो जाए पानी नू। हजूर कहिंदे ने उस कमल दे फुल दा उत्तर सी, कहिंदा बाबा जी के असल विच इस पानी दी बदौलत ही मेरी खौंद है। जिस दिन मैं पानी नू छड़ दिता उस दिन जेड़े गुण तुसी मेरे गिनाए ने इन्हां विचों एक भी गुण नहीं रहना। पानी नू छड़न दी देर कि मेरा आपा ही खत्म हो जाना, मेरी खौंद नू खतरा है। कहन लगे ना सूरज दा प्यार, ना एदे तो निर्लेप दा, ना सुगंधी, ना रूप ते ना भवरे, तां की होया जे पानी ठोकरा मारदा। आखिर जेड़े तुसी गुण गिण के दसे ने एक गुण भी तां मैनू पानी ने कृपा करके बख्शे ने ना, जिन्हें गुण दिते ने एदी ठोकर भी सहारांगे। हजूर ने कहा ए मनुख प्रेमा भगती दा अर्थ है कमल दी थरा तू प्यार कर, किवें परमात्मा ने तेनू सुंदर देह दिती है, परमात्मा ने तेनू गुणा दी सुगंधी दिती है, परमात्मा ने तेनू सुरत दिती है संसार विचो निर्लेप रहन दी जुगत दिती है, परमात्मा ने तेनू ताकत दिती है करोड़ा जन्मां दी दूरी होने दे बावजूद तू सुरत करके ओदे चरणा नू पकड़ के खेड़ा प्राप्त कर सकना। जिस परमात्मा देव ने कमल दी तरह तेरे ते इन्नी कृपा कीती होवे, ते जे फिर भी थोड़ा जा झटका लगे दुनियावी, ते यक लखत परमात्मा वालों मुंह मोड़ के पिठ करके चला जाए, सच जानी ए कदी सच्चे प्रेमी नहीं हुंदे। प्रेमी तां होवे जिहड़ा ठोकर खा के भी अपने प्यारे दा लड़ कदी ना छड्डे। एवे प्रेमा भगती, बाबे नानक ने ऐसी प्रेमा भगती कीती, ते बाणी विच बचन कर गए, कहन लगे रे मन ऐसी हरशों प्रीत कर, ਰੇ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀਐ, ਜੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਛਾੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇਹ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਠੋਕਰਾਂ ਸਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਤਾਨਾ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ
1: ਘਟਦਾ।
2: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਵਖਦ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਜਾਤੀ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਵਾ ਹੈ, ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਵਖਦ ਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਬੈਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਤੋ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਬ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ।

0: ਤਾਕਾ ਜਸ ਕਵੀ ਜੈ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਲ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ
0: ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਦੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਬਲਾ ਬੁੱਤ ਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰ ਨੀਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਵਿੱਚੇ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੁਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀਜੈ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੋ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬੰਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤਿ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਇਸੇ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ
0: ਇਹਾ ਉਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਰੱਖੈ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸਤਾਰੀ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ
0: ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੇ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੇ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨੇਹੀ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖਿਆ ਬਿਸਮਾਦ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹੇ
0: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਹੇ
0: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਬਰਕਤ ਲਾਗੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਜੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਇਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਰੂਰੇ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ
0: ਜੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਜ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋਨਾ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤੂਤਨ ਹੋਏ
1: ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਛੁ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਹਿਨਕੇ ਕਛੁ ਨਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਨ ਕਥੂ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸ ਸੋਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਨ ਵੀਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹੋਂ ਤਾਪ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਿਆਈ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਨ ਕਭੂ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਰ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ
1: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਸੋ ਬਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋ ਤਨਹਾਲ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਸ਼ਵਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਣ ਦੱਸੈ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਰ ਘੜ ਜੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਮਿੱਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਤਾ ਬਖਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨ ਭੇਖੈ
0: ਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ
0: ਜੈਸੇ ਜਲ जल में कमले ले
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीर एक
0: जो बसदा को खुद को चिंदन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक जो पाव का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
0: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे
0: नानक जन प्रभ आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रसम ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी दे तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का हो सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी का कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बलबल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने थे
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना
0: ब्रह्म ज्ञानी की कर ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारै जो अंतर नाम सर्व में देखे भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कत्रिया रूप न देखे नेत्र
0: साधक टहल संत संग हेत
1: कर्णन सुने काहू पे निंदा
0: सबते जाने आपसको मंदा
1: और प्रसाद विद्या पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्रिय जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वह ने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंश
0: केवल भगत कीर्तन संग रचय
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर हो वत कृपाल
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावे
0: नानक को वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग
1: मन से दिन से सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पे विष्ण प्रीत
1: धरती चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबोध है
0: राम नाम आत्म में शुद्ध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जोन न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मै जाने अस्थूल
1: जो वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावे जन कोए
1: कर कृपा अंतर उतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत कितै न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगा परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोजी पर है
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: रब की आज्ञा आत्म हितावै
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हरत तैसा उस सोग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिक काटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताई साई जुगत
0: नानको प्रख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ
0: जित जित कर रखे तैसा तिन नाम
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सोई पन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक प्रकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी,
0: कई कोट आचार व्यवहारी,
1: कई कोट भय तीर्थ वासी,
0: कई कोट बन प्रमय उदासी,
1: कई कोट वीर के स्रोते,
0: कई कोट तपीसर होते,
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी,
0: कई कोट कब काव विचारे,
1: कई कोट नवतन नाम त्यावहे,
0: नान करते का अंत न पावे,
1: कई कोट भय अभिमानी,
0: कई कोट अंध अज्ञानी,
1: कई कोट कृपन कठोर,
0: कई कोट अभिग आत्म ने
1: कोर, कई कोट पर दर्प को हिरहे,
0: कई कोट पर दुख न करे,
1: कई कोट माया श्रम माहे,
0: कई कोट पर देश परमा है,
1: जित जित लाभ होते तित लगना,
0: नानक करते की जाने करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए,
0: कई कोट पात्र वृक न बजाए,
1: कई कोट पवन पानी में संतर,
0: कई कोट देश भूमंडल,
1: कई कोट शशि सूर नक्षत्र,
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र,
1: सगर समग्री अपने सूत धार,
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार,
1: कई कोट राजस ताम सातक,
0: कई कोट वेद प्राण स्मृति अर शास्त्र,
1: कई कोट की रतन समुंद,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट की ये चिर जीवे,
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे,
1: कई कोट जख के निर्पिशाच,
0: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच,
1: सबे नेरा सब हूं ते दूर,
0: नानक आप लिप्त रहा प्रभुर,
1: कई कोट पाताल के वासी,
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है,
0: कई कोट बहुत जोनी फिर,
1: कई कोट बैठ ही खाहे,
0: कई कोट काले थक पाहे,
1: कई कोट की ये धनवंत,
0: कई कोट मा चिंत,
1: जय जय भाणा तह तह राखे,
0: नानक सब कुछ प्रभु के हाथे,
1: कई कोट भय वैरागी,
0: राम नाम संग तिन लिव लागी,
1: कई कोट प्रभु को खोजंते,
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते,
1: कई कोट दर्शन प्रप्यास,
0: जिनको मिलियो प्रभु विनाश,
1: कई कोट मांग है सत्संग,
0: पार ब्रह्म तिन लगा रंग,
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
0: नानक तेजन सदा धन धन,
1: कई कोट खानी अरखंड,
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
1: कई कोट होए अवतार,
0: कई जग की नु विस्तार,
1: कई बार पसरियो पासार,
0: सदा सदा एक एक अंकार,
1: कई कोट कीने बहु भांत,
0: प्राप्त होए प्रभु माहे समात,
1: ताका अंत न जाने कोई,
0: आपे आप नानक प्रभु सोए,
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
0: जिनहो वत्या तुम प्रगास,
1: कई कोट तत्व के बेते,
0: सदन हारे एको नेत्रे,
1: कई कोट नाम रस पीव है,
0: अमर भय सब सद ही जीव है,
1: कई कोट नाम गुण गावे,
0: आत्म रस सुख सहज समावे,
1: अपने जन को साथ साथ संभारी,
0: नानक ए परमेश्वर के प्यारे श्लोक,
1: करण कारण प्रभु एक है दूसर नाही कोई,
0: नानक तिस बलहार ने जल थल मई अल सोए, अष्टपदी
1: कर्ण करावन करना जोग,
0: ज्योत सुभावे सोई होग,
1: फिर मैं ताप उताप नहारा,
0: अंत नहीं किश पारा वारा,
1: हुक्मे धार अधार रहावे,
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे,
1: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार,
0: हुक्मे अनेक रंग प्रकार,
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई,
0: नानक सब में रहा समाई,
1: रब भावे मानो गत पावे,
0: रब भावे ता पात्र त्रावे,
1: रब भावे बिन सास ते राखे,
0: रब भावे ता हर गुण पाखे,
1: रब भावे ता पत उधारे,
0: आप करे अपन विचारे,
1: दोहा श्रेया का आप स्वामी,
0: खेले से अंतर जामी,
1: जो भावे सो पार करावे,
0: नानक दृष्टि अवर न आवे,
1: बहु मनुख ते क्या होए आवे,
0: ज्योत सुभावे सोई करावे,
1: इसके हाथ होए ता सब पिछले,
0: ज्योत सुभावे सोई करे,
1: मन जानत बिखिया मह रचे,
0: जे जानते अपने आप बचे,
1: भरमे भूला दह दिस धावे,
0: नमक माही चार कुंड फिर आवे,
1: कर कृपा जस अपनी भक्त दे,
0: नानक ते जन नाम मिले,
1: छिनवे नीच कीट को राज,
0: पार ब्रह्म गरीब नवाज,
1: जाका दृष्ट कछु न आवे,
0: जिस तत्काल दह दिस प्रगटावे,
1: जाको अपनी करे बख्शीस,
0: ताका लेखा न गणे जगदीश,
1: जियो पिंड सब तिसकी रास,
0: कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास,
1: अपनी बनत आप बनाई,
0: नानक जीवै देख बढ़ाई,
1: इसका बल नाही इस हाथ,
0: कल करावन सर्व को नाथ,
1: आज्ञाकारी बपरा जियो,
0: ज्योत सुभावै सोई फन थी,
1: अब हूँ ऊंच नीच मैं बसे,
0: अब हूँ सोग हर करंग हसै,
1: अब हूँ निंद चिंद व्यवहार,
0: अब हूँ ऊबक आस प्याल,
1: अब हूँ बेता ब्रह्म विचार,
0: नानक आप मिलावन हार,
1: अब हूँ नृत करे बहु भांत,
0: अब हूँ सोए रहे दिन रात,
1: अब हूँ महाक्रोध विकराल,
0: अब हूँ सर्व की होतरवाल,
1: अब हूँ होए बह बड़ राजा,
0: प्रभु भिखारी नीच का साजा,
1: प्रभु आप कीर्त में आवे,
0: प्रभु भला भला कहावे,
1: जो प्रभु राखे ते भी रहे,
0: वर प्रसाद नानक सच कहे,
1: प्रभु होए पंडित करे बख्यान,
0: प्रभु मोहन तारी लावे ध्यान,
1: प्रभु तट तीर्थ स्नान,
0: प्रभु सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
1: प्रभु पीठ हस्त पतंग होए दिया,
0: अनक जोन परमे परमिया,
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावे,
0: जो प्रभु भावे तिवे न जावे,
1: जो भावे सोई होए,
0: नानक दूजा अवर न कोए,
1: प्रभु साध संगते पावे,
0: उस स्थान ते बौर न आवे,
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश,
0: उस स्थान का नहीं विनाश,
1: मन तन नाम रते एक रंग,
0: सदा बसै पार ब्रह्म के संग,
1: ज्यों जल मह जल आए कटाना,
0: ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना,
1: मिट गए गबन पाए विश्राम,
0: नानक प्रभु के सद कुर्बान श्लोक,
1: सुखी बसै मस

0: अष्टपदी
1: जिसके अंतरराज अभिमान
0: सो नरकपाती होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: ज्ञान की है मुक्ति अज्ञा सुख पावे
1: धनवंता हो कर गर्भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुक ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: में हो जाए पसमंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जहाँ का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
0: शरम पावे सकले ब्रथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नर्क स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट में आवे
1: सर्व की रेन जहाँ का मन होए
0: कौन नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: जब इस को सुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: तब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु को साधना नानक हो छूटे
1: सहस कटे लख को उठतावे
0: रत्न आवे माया पछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नै तृप्तावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुपन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: दुर्भागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करना हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभ सोए
1: जो किस पीनो सो अपना रंग
0: सब ते दूर सब हूं कै संग
1: दूजा देख करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिनसे आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेशे समझे
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप तीनों अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते भिन्न कहो किस होए
0: आंत नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद किने बखियानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदय किने बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: घटघट सुनी सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन आरजा कटे
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत हो ही मलीन
0: संत का दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भी तरे
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जले
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी गत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज तेहीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख में दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा अपवित
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लग
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाओ
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उद्यान परमाई है
0: संत का दुखी उजड़ पाई है
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस ना ही
0: अपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रखना हार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इं बिल लाए
0: ज्यो जल बे हून मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजा
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: ज्यो बुआड़ तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दिक्का तुर ही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइये
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टे कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत कर हो दिन रात
0: तिसे त्यागो सास ग्रास
1: सब कछ वर्तै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वडपा की नानक जन से श्लोक
1: तज हो सियान पुसुर जन हो सिमर हो हर हर राय
0: एक ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਦੇਵਨ ਪਉ ਏਕ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਪਉ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਨਾਨਕ ਟੈਕਸ ਨਾਹੀ ਹਾਥ
1: ਜਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਨੈਨੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਬੜ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ
0: ਤੁਤ ਕੀਓ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਸ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ
0: ਨਾਨਕ ਪਛਾਣ ਲੱਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਚਿਤੇ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਕਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਨਹਿ ਕਿਸ਼ ਮਰੈ
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ
1: ਆਪਣ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਅਜਾਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ
0: ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾ ਪਿਓ ਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ਼ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਲੱਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਪਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਤਾਪ ਸਹਿ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਈ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ
1: ਜਪ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਏ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ

0: राष्ट्रपति।
1: जब अकार एहो कछ न दिष्टेता,
0: पापन तब कहते होता,
1: जब धारी आपन सुन समात,
0: वैर विरोध के संग कमात,
1: जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत,
0: हरक सोको कसै व्यापत,
1: जब आपन आप आप आर ब्रह्म,
0: मोह कहा किस होवत परम,
1: आपन खेल आप वर्ती जा,
0: नान करने हार न दूजा,
1: जब होवत प्रभ केवल धनी,
0: जब बंद मुगत कहो कसको गनी,
1: जब एक ही हर अगम अपार,
0: जब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार,
1: जब निर्गुण प्रभ सह सुपाही,
0: जब शिव शक्त कहो हित ठाए,
1: जब आप ही आप अपनी ज्योत धरै,
0: जब कवन निडर कवन कत डरै,
1: आपन चलित आप करने हार,
0: नानक ठाकुर अगमय पार,
1: अवनाशी सुख आपन आसन,
0: जन्म मरण कहो कहा विनाशन,
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए,
0: जब जमकी त्रास कहो किस होए,
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका,
0: तब चित्र गुप्त किश पूछत लेखा,
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे,
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे,
1: आपन आप ही अचरजा,
0: नानक अपन रूप आप ही उपरजा,
1: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता,
0: जय बिन मैल कहो क्या तोता,
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण,
0: जय कौन कमान कौन अपमान,
1: जय स्वरूप केवल जगदीश,
0: जय शल छिद्र लगत कौ कीस,
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै,
0: जय किसै भूख कवन तृप्तावै,
1: करन करावन करनै हार,
0: नानक करते का नहि समार,
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई,
0: तब कवन माए बाप मित्र सत भाई,
1: जय सर्व कला आपे प्रवीण,
0: जय वेद देव कहाँ को चीन,
1: जब अपन आप आप पुरता है,
0: शगन अपशगन कहाँ विचार है,
1: जय आपन ऊंच आपन आप नेरा,
0: जय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा,
1: विस्मन विस्म रहे विस्माद,
0: नानक अपनी गत जन हो,
1: जय छल अशेद अभेद समाया,
0: वहाँ कसे व्याप्त माया,
1: आप उसको आप ही आदेश,
0: गुण का ना ही प्रवेश,
1: जय एक एक एक भगवंता,
0: जय कौन अचिंत किस लागे चिंता,
1: जय आपन आप पतियारा,
0: जय कौन कथा कौन सुनने हारा,
1: बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा,
0: नानक आप उसको आपे पहुँचा,
1: जय आप रचियो प्रपंच आकार,
0: गुण मैं की नो विस्तार,
1: पाप पुन तह पई कहावत,
0: ओ नरक को स्वर्ग विशावत,
1: काल जाल माया जंजाल,
0: मैं मोह परम पै भार,
1: दुख सुख मान अपमान,
0: अनक प्रकार की उपख्यान,
1: अपन खेल आप कर देख,
0: खेल संकोच तो नानक एक,
1: जय अवगत भगत है आप,
0: जय पसरे पसार संत प्रताप,
1: तुम पाप का आप ही धनी,
0: उनकी शोभा उन्हों बनी,
1: आपे कौतक करे अनब जोज,
0: आपे रस भोग निर्जोग,
1: जिस भावे तिस आपन नाय लावे,
0: जिस भावे तिस खेल खिलावे,
1: बेशुमार अथाह अगंत अतुल,
0: ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले, श्लोक
1: जी जंत्र के ठाकुरा आपे वर्तन हार,
0: नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार, राष्ट्रपति
1: आप कथे आप सुनने हार,
0: आपे एक आप विस्तार,
1: पावे तां श्रेष्ठ उपाय,
0: अपने भाणे लय समाये,
1: तुम ते भिन्न नहीं किश होए,
0: आपन सूत सब जगत परोए,
1: जाको प्राप्ति आप बुझाए,
0: सच नाम सोई जन पाए,
1: सो समदर्शी तत् का बेता,
0: नानक सगल श्रेष्ठ का जेता,
1: जी यंत्र सबका कै हाथ,
0: दीन दयाल अनाथ को नाथ,
1: जिस राख तिस कोय न मारे,
0: सो मु आज समनो बिसारे,
1: इस तक अवर कहां को जाए,
0: सब सिर एक निरंजन राय,
1: की जुक्त जा कै सब हाथ,
0: अंतर बाहर जान साथ,
1: गुण निधान बेअंत अपार,
0: नानक दास सदा बलहार,
1: पूर्ण पूर रहे दयाल,
0: सब पर हो वित कृपा,
1: अपने कर्तव्य जाने आप,
0: अंतर जामी रहो व्याप,
1: प्रत पाले जी अनुभव भांत,
0: जो जो रचियो सो तिसै त्यात,
1: जिस भावे तिस लय मिलाए,
0: भगत करे हर के गुण गाय,
1: मन अंतर विश्वास कर मनिया,
0: कर्म हार नानक एक जाने,
1: जन लागा हर एक कै नाई,
0: इसकी आस न वृथि जाए,
1: सेवक को सेवा बन आई,
0: हुकम बूझ परम पद पाई,
1: इसके ऊपर नहीं बीच चार,
0: जाके मन बसया निरंकार,
1: बंधन तोर भय निर्वैर,
0: अनदिन पूजा गुर के पैर,
1: ए लोक सुखी है परलोक सुहेले,
0: नानक हर प्रभ आपे मेले,
1: साथ संग मिल करो आनंद,
0: उनका वो प्रभ परमानंद,
1: राम नाम तत् करो विचार,
0: दुर्लभ देखा करो उदार,
1: अमृत वचन हर के गुण गाओ,
0: प्राण तरन का यह स्वभाव,
1: आठ पैर प्रभु को नेरा,
0: मटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा,
1: उपदेश हृदय बसावो,
0: मन इच्छे नानक फल पावो,
1: हलत पलत दो लेहो सवार,
0: राम नाम अंतर उरतार,
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया,
0: बसे ते साच परीखिया,
1: मंत्र नाम जप होले बलाए,
0: दुख दर्द मन ते पाओ जाए,
1: सच व्यापार करो व्यापारी,
0: दरगह निधह खेप तुम्हारी,
1: एक टेक रखो मन माहे,
0: नानक बहुर न आवे जाहे,
1: जिससे दूर कहाँ को जाए,
0: उबरे राखन हार ते आए,
1: निर्भव जपै सकल भव मिटै,
0: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै,
1: जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख,
0: नाम जपत मन होवत सुख,
1: चिंता जाए मिटै हंकार,
0: जिस जन को कोई न पहुँचन हार,
1: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा,
0: नानक ताके कार्ज पूरा,
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट,
0: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट,
1: चरण कमल जाके अनूप,
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
1: भान सेवा सेवक परवान,
0: अंतर जामी पुरख प्रधान,
1: जिस मन बसै सुहोत निहाल,
0: ताका निकट न आवत काल,
1: अमर भये अमरा पद पाया,
0: साध संग नानक हर त्याया, श्लोक
1: ज्ञान निरंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश,
0: हर कृपा ते संत पेटिया, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਟੀਠਾ
0: ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮਿੱਠਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕ ਘਟ ਮਾਹੇ
0: ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ
1: ਨੌ ਨਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ
0: ਇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ
1: ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤਹਿਨਾਦ
0: ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈਐ ਚਰਤ ਬਿਸਮਾਦ
1: ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਿਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ
1: ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ
0: ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਰਮ ਮਾਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ
0: ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
1: ਅੰਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ
1: ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤਰ ਮਾਹੇ
0: ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸੈ ਸਮਾਹੇ
1: ਇਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਉ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਉ
1: ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮਹਿ ਦੇਖ
0: ਸਸਿਆ ਸੂਰ ਨ ਖਤਰੇ ਮੈਂ ਏਕ
1: ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ
0: ਆਪ ਡੋਲ ਨਾ ਕਬ ਹੁਣ ਡੋਲੇ
1: ਸਰਬ ਕਲਾਕਾਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ
0: ਬੋਲ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲ
1: ਸਰਬ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਕੀ ਜੋਤ
0: ਧਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਵੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ
0: ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ
1: ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ
0: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ
1: ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ
1: ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਪੀਓ ਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ
1: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਾਰ
0: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ
1: ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ
0: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
1: ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ
1: ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ
1: ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ
0: ਸਰਬ ਨੈਣੇ ਆਪੇ ਖਨਹਾਰਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਕਾ ਤਨਾ
0: ਆਪਣ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ
1: ਆਵਨ ਜਾਨੇ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ
1: ਸਭ ਕੈ ਮਤ ਅਲਿਪਤ ਹੋ ਰਹੇ
0: ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੇ
1: ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ
1: ਇਸੇ ਹੋਈ ਸੁਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ
0: ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਸ਼ਕਰਾ
1: ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਆਤਨੀ ਕੀ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ
1: ਆਪ ਸਾਜ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ
0: ਪੋਤ ਪੋਤੇ ਆਪਣ ਸੰਗਰਾਚ
1: ਕੀ ਗਰਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ
0: ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ
1: ਇਸ ਕਾ ਕੀ ਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਣ
1: ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਆਪ ਮਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ
0: ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ
1: ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ
0: ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚ ਤਿਆਵੈ ਨਾਮ
1: ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ
0: ਨਾਮ

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुर का सुन उपदेश
0: सार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमरहु गोविंद
0: मन अंतर की उतरै चिंद
1: आस अनित त्याग हो त्रंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहु
0: साथ संग अग्न सागर तरहु
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदार
0: आप त्रैलोक निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजय
0: सुन सुन अनंत करे प्रभ गाजय
1: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कह साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभ आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेवा
1: काल जंजाल विकार के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभ धारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्थित करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सुहोत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊत पाए अस्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ये फल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सकल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटे
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत तांती बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से पै भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सत्य ऊच तांती शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम।

जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दिया ये को रहना पर ये पाइए को रहना पर ये पाइए।

पौड़े बिन सतगुर कि ना पायो, बिन सतगुर कि ना पाया। सतगुर विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुर मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हम हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की दिशन तो खी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया।

0: महला पहला पर गड्डी लदिए पर भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड़िए खास पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल और हो में चखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: सचकाल पूर्व वर्त्या कल कार्त बेताल बियो बीज बतले के अब क्यों बेदाल जे को तौकबे रुति हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैवज खुमचड़ा ये सरु पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए दा कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार।

0: धुआ पूरा तपे का सत गिर धुआ हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर धुआ हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में ऐसा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमल किया।
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाव पद करनी।

ओडिशा महोदया कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
2: नमस्तल परनामे समस्तल परनासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करी मुल को निंदा समस्तल निवासी अजाय बेबिभूते गजाय बगनी में हरियंग करियंग करी मुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते

कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के भूप भली बदन आवत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूप तंत को नांगे पाए पधारे जीत फिरे सब देश दसान को बाजत ढोल मृदांग नगारे गुंजत गूड गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवेख भवान के भूपत कौन गना नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे

है पास कुमिर तान को पूजन तहायो। कूर क्रिया और ज्यो सब ही जाग श्री भगवान को पेहद न पायो।

मारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरिया सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पढ़ पढ़।

तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जाग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

सतनाम कर्ता पुरुख निरभौ निरवैर अकाल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे गुरु रूप शासन जी पते प्रवान करने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो दर कहा सो घर कहा जित बह सर्व संभाले। ओ दर कैसा है ओ घर कैसा है हे प्रभु जिथे बैठ के तू तमाम ब्रह्मंड दी जीवां दी संभाल करदा। फिर सतगुर रामकली राग विच ऐसा कहंदे ने रामकली मल्ला पहला जित दर वसें कवन दर कहिए दरां भीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरां उदासी सो दर कोई आए कहे सारे दरां तो उदास होके निराश होके जिस दर्दी में तलाश कर रहे हैं कोई दसे कोई ते दसे। एक हकीकत है जितने चिर तक संसार दी प्यास बड़ी प्रबल है निरंकार दी प्यास पैदा ही नहीं होती। जितने चिर तक पदार्थां दी भुख बड़ी प्रबल है परमात्मा दी भुख पैदा ही नहीं होती। ऐसा क्यों हो जाता है? दरअसल शरीर दियां जिहड़ियां लोड़ां ने उन्हों मन अपनियां लोड़ां बना लैंदा। कुछ लोड़ां शरीर दियां ने पर उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा है तो लोड़ां लोभ बन जांदियां तो फिर लोभ दी कोई सीमा नहीं है कोई सीमा नहीं है। गुरबाणी दी जो बारीकियां ने मैं आप जी दे सामने रख रहे हां जिस दिन सच्चे नाम दी भुख पैदा होई सच्चे नाम की लागे भूख तो समझ लेना जिहड़ी झूठ दी भुख सी वो शांत हो गई। झूठ किसनू कहंदे ने जो है ते नहीं हो जांदा उहनू मिथ्या कहंदे ने है पर नहीं हो जांदा। बचपना है सी नहीं हो गया जवानी है एक दिन नहीं हो जाती बुढ़ेपा है एक दिन नहीं हो जाता ये जीवन है एक दिन नहीं हो जाता। इन्हां अखां नाल जो कुछ भी दिखाई देता है जो है वो नहीं है देख बदल जाता है उन्हों मिथ्या कहंदे उन्हों झूठ कहंदे कूड़ सब संसार।
जितने चिर तक उसकी प्रबल भुख है परमात्मा की भुख पैदा ही नहीं आती। संसार दियां लोड़ां ने और लोड़ां इस तन दियां ने और उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा है तो फिर लोड़ां लोभ बन जांदियां ने।

ता ताके के जिए जो अनहोने होए विश्राम नल पढ़ना पड़ेगा। प्रथमे देखना पड़ेगा चिंता किस गल दी है। चिंता दे कारण दो ने, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मनुख दी चाहत है, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पड़ोसी नाल होया होवे पे मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई है किधरे हो ना जाए, किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना ही चाहिए है, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी तलब है, मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है, ऐसा होना ही चाहिए है, पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, मता ना होवे। चिंता दे ए दो कारण ने, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता, ऐसा होना ही चाहिए है, मैं चाहना। पहले इस गल दी चिंता है किधरे हो ना जावे, जो मैं नहीं चाहता किधरे हो ना जावे, और जो मैं चाहना ऐसा ना होवे किधरे ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं, चिंता नो एक पासे रख, जो होंदा है ओ होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता नो परे सुट, जो होंदा है ओ होंदा है, जो नहीं होंदा ओ नहीं होंदा। अगर एक बुढ़ा आखे कि मैं मासूम बच्चे दी तरह हो जावा, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। और एक जवान ए आखे कि मैं कदी बुढ़ा ना हुआ, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। एक बुढ़ा ए आखे मैं कदी नहीं मरा, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। जन्म हो गया होना सी, मरण हो गया होना सी, नफा हो गया होना सी, नुकसान हो गया होना सी, कबूल कर दिया ही। मनुख जन्म जीवन ते मरण दी पीड़ा तो बाला तर हो जाता है, पर किमे होवे, इदी साधना की कीती जाए, किस तरह कीती जाए। क्योंकि गल इतनी चल रही है, और धन गुरु नानक देव जी महाराज नो विश्व भर ने जिस आवाज नाल पुकारिया सी, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, तो रोग जन्म है, रोग जीवन है, रोग मरण है, किमें छुटकारा होवे। गुरु नानक किस ढंग नाल इलाज कर दे सन, किमें इलाज कर दे सन। प्रथम देखना पड़ेगा कि मनुख जिथे भी बैठा है, परिवार विच बैठा है, बाजार विच बैठा है, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे विच बैठा है, कारोबार विच बैठा है, या वेला बैठा है, बैठा है भूतकाल दियां यादां विच, बैठा है भविष्य दी चिंता विच। ये दो बोझ इस दे दिमाग ते पए ने। मनुख हमेशा भविष्य विच जीवदा है, मनुख हमेशा भूतकाल विच जीवदा है। कहिंदे ने तन नूं भज्जण दौड़न लई अस्थान चाहिए, जगह ही ना होवे खुली तो तन भज दौड़ नहीं सकदा, ते मन नूं भज्जण दौड़न वास्ते समा चाहिए। मन दी भज दौड़ समय विच आउंदी है, अस्थान विच नहीं आउंदी। अस्थान विच दौड़दा है तन, समय विच दौड़दा है मन। अगर जगह ही नहीं, अस्थान नहीं, तो तन एक जगह बैठ जाएगा, अगर समय ही खो जाए तो मन मिट जाएगा, मन टिक जाएगा। सारी दुनिया विच एक गल ते पकड़ विच आ गई है, सुख उदों बनदा है, आनंद उदों बनदा है जिथे मन किसी संगीत दी धुन विच, किसी नृत्यकार दी कला विच, किसी साज दे वादन विच, आवाज विच, मधुर धुनी विच वक्ती तौर ते मन टिक जाए, रस्ते बन जांदा है, आनंद ते बन जांदा है, पर सदीवी टिकाऊ नहीं आउंदा। क्यों? मन भटकदा है समय विच, ते समा बहुत वड्डा है भविष्य, समा बहुत वड्डा है भूतकाल। पता नहीं कदों असी चले सी, लंबी यात्रा है, बड़ा लंबा समा। भूतकाल साडा बहुत लंबा है, माजी साडा बहुत लंबा है, ते भविष्य साडा बड़ा लंबा है। पता नहीं कदों तक असी होवांगे, असी अज दे नहीं हां, हिमालय पर्वत तो पहले दे हां,
ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ।

इको एक हरमन प्यारा ग्रोसरी स्टोर फ्रूटी कैना जिन्हां दे प्राइसेस होलसेल नालों भी घट हन। फ्रूटी कैना दी नवी लोकेशन साउथ सरी विच जल्द ही खुलन जा रही है 2990152 स्ट्रीट सरी। इस हफ्ते दे स्पेशल हन 25 जून तो 1 जुलाई तक 4 पाउंड इंडिकन चिट्टे छोले लवो 388 दा बैग, 2 पाउंड प्लेन गुड 298 नू अते रोमा टोमेटोज 98 सेंट्स नू पाउंड। फ्रूटी कैना विशेज यू हैप्पी कैनेडा डे।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कोमो की पेशेंस का टेस्ट मत।

हूं मैं रोग मानक को दीना, काम रोग मैं गलवस कीना, दृष्ट रोग पचमुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिशे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।

0: क्योंकि समझ नहीं
1: ते धार्मिक जिम्मेवारी नू पशु निभांदे नहीं क्योंकि समझ नहीं। इस वास्ते पशु सुखी है। कई दफा मनुख अचेत इस वास्ते होना चाहता है, मैं भूल जावां समाजिक जिम्मेवारियां नू, मैं भूल जावां धार्मिक जिम्मेवारियां नू, मैं भूल जावां राजनीतिक जिम्मेवारियां नू, मैं फिर पशु हो जावां, मैं फिर पशु हो जावां। सुख या ते अचेत होण दे छे या परम सुचेत पूर्ण सुचेत होण दे छे, अर्ध चेतन दे छे नहीं है, अर्ध चेतन दे छे नहीं है। अर्ध चेतन ते अधरंग है, एक लत कम कर दिए दूसरी नहीं, एक बां कम कर दिए दूसरी नहीं। दुख दा ते बोध हो गया, इस तो छुटकारा किवें होवे इस दा बोध कोई नहीं, इस दा पता नहीं। इनू कहने अर्ध चेतन। पूर्ण चेतन जगत दुख है, जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, इसका बोध है और इसका भी बोध है। ये पूर्ण चेतन बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक फिलोसफर महान स्याणे ज्ञाता छोटी दे साइंटिस्ट ये सारे दे सारे अर्ध चेतन ने, पूर्ण चेतन नहीं ने, अर्ध चेतन। यही कारण है कि इना दी जिंदगी भी दुख विच बतीत होंदी है, परेशानियां विच बतीत होंदी है। हैरान है कि कवियां विचों सिरमौर कवि, चाहे हिंदी देने, पंजाबी देने, उर्दू देने या इंग्लिश देने, किसी भी भाषा दे चिंतक कवि, दार्शनिक कवि ये कोई समाधि लीन नहीं मिलन गए, शराब खाने च मिलन गए, पब च बैठे मिलन गए, झूमदे मिलन गए, डगमगांदे मिलन गए। इना दी कविता पढ़ के जिंदगी नू संभलन दी प्रेरणा मिलती है, पर जिन्हों की कविता जिंदगी दे संभलन दी प्रेरणा दे रही है खुद डगमगा के गिरे हुए ने, गिरे हुए ने, गिरे हुए ने। क्यों? अर्ध चेतन ने या ते पूरा अचेत है पशु सुखी होवेगा, या पूर्ण सुचेत है ब्रह्म ज्ञानी संत आनंदित होवेगा, अर्ध चेतन ते दुखी होवेगा। अर्ध चेतन नु जिम्मेवारी निभानी पैंदी है समाज दी, अर्ध चेतन नु जिम्मेवारी निभानी पैंदी है परिवारक राजनीतिक, अर्ध चेतन दे सामने धार्मिक जिम्मेवारियां भी ने। जद ये सब कुछ बोझ दी तरह महसूस करता है तो फिर पशु हो जाना चाहता है, फिर पशु हो जाना चाहता है। भावे प्रकृति ने इसनु मनुष्य बनाया कि फिर पशु हो जाना चाहता है। कारण सुख या पशु होण दे चाहे, आनंद या परम सुचेत होण दे चाहे, मनुख ते दुखी रहेगा, मनुख अर्ध चेतन है। ये मनुख चाहे दार्शनिक है, चाहे फिलोसफर है, चाहे साइंटिस्ट है, चाहे चोटी दा हुक्मरान है, चोटी दा सैण है, चाहे प्रजा दे चो है, चाहे हुक्मराना दे चो है, सब दुखी ने, सब दुखी ने, सब दुखी ने। फर्क सिर्फ इतना है कुछ कबूल कर लेंदे ने, कुछ कबूल नहीं कर देने। मेरे देखे महान स्याणे कबूल कर लेंदे ने, महामूर्ख कबूल नहीं करदे, कबूल नहीं करदे, और फिर जीवन दुख विच बतीत होंदा है। जद मैं बेड़ियां नू बेड़ियां ही नहीं मनदा, जद मैं जेल नू जेल ही नहीं मनदा, जद मैं हथकड़ियां नू हथकड़ियां ही नहीं मनदा, तो इन्हां नू तोड़ के आजाद होण दा फिर ते ख्याल भी नहीं पैदा हो सकता, फिर ते यतन ते कोशिश भी नहीं हो सकती। तो मनुखता ऐसा यतन कर रही होवे दिखाई नहीं दे रही। जगत ते दुख है। बाबा फरीद कहंदे ने आम लोकां दी तरह मैनू भी एक भुलेखा सी, मैं दुखी हां, बाकी ते मौजां ही करदे पैने, क्योंकि जिस कोल हाल पुछदे हां की हाल चाल है, मौजां चाल, ਬੜੇ